0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
3: No worries. I'm having fun on PlayOjo.
4: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
2: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
3: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
5: Feel the fun. PlayOjo.
6: 18 plus gamble aware।
7: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होश

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापे जाए।

0: The SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
0: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: Backed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
1: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
5: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
7: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All atoll protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Breakfast with Deep Raja.

0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Mum always said, Beda, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लिखाई रह्यो छे।
6: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाय आप पवित्र यात्रा पर
5: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
6: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
5: दर्शन पण अने यूरोप पण
6: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
5: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
6: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
7: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिटली लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी वेयर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सेकंड्स रेमिटली वन इजी ऐप टू सेंड मनी होम रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड by the FCA.
8: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
9: 25? Seriously?
8: Sounds like Ojo time.
9: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
8: Sorry about the wait. How can I help?
9: You can help me celebrate. I won.
10: Feel the fun. Play Ojo.
11: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
13: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। क्या गाना है, खूबसूरत गाना, और इसे क्या गाया है किशोर दा ने। और इसी गाने से मिलती जुलती चार लाइनें विजय जी आपने भी हमारे साथ शेयर की हैं कि जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता, कभी समय रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं, इसलिए जो समय अभी आपके पास है उसे जी डालिए, कल की चिंता में अपने आज के जीवन को खराब मत कीजिए। और इसी बात के साथ लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। किशोर दा की आवाज में गोलमाल फिल्म का था ये गाना, और उससे पहले प्रेम रोग फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और लता जी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मौसम ने थोड़ी सी करवट बदल ली है, आज मौसम में थोड़ी ठंडक है और इस ठंडक की हम सबको बहुत ज़रूरत थी। तो आज मौसम कहूँगी बहुत ही सुहाना है, और ऐसे सुहाने से मौसम में यहाँ पर सुहाने गाने मैं आपको सुनवाती रहूँगी 1 बजे तक। आप बस मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो अगला गीत सुनवाने से पहले आपको हम याद दिला दें कि 1 pound आपको दे सकता है 127.3 भारतीय रुपए जब आप पैसा भिजवाते हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। और आपको बता दें कि बिफोर द एंड ऑफ द जून आपको मिल सकता है 75 pound का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Laika Gold.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com, कॉल 07932 3852।
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
11: Lights on, shutters up, staff ready.
10: But today's customers don't start on the high street.
11: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
10: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
11: They walk into your competitors.
10: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Munthra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
13: Visit munthraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Munthra Holidays. What's your travel mantra?
14: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
12: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
16: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में। Variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Visit iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
17: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
18: Feel good track brought to you by Derry Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई सर्दी खांसी मलेरिया और लवेरिया के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुखारिया जरूर हो रहा है। मतलब सर्दी जुकाम को मैंने सर्दी जुखारिया कर दिया, ये जरूर हो रहा है, क्योंकि जब गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है तो पता नहीं क्यों ये सर्दी जुखारिया बहुत फैलता है। और ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जिन्हें हो रहा है, तो आप अपने आप को बचा कर रखिए, नहीं तो मौसम का जो मजा है ना वो सच में टिश्यू से समझ रहे ना, नाक पोंछने में ही चला जाता है। एनीवेज उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, मजे में हैं, और आपने मुझ तक ढेरों मैसेजेस भी पहुंचाए हैं। तो चलिए क्या करें, डालें उन पर एक नजर, चलिए फिर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए आपके मैसेजेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा एक बार फिर से इस शो में आपका स्वागत करती है, आपको कहती है, देती है मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम एंड थैंक यू। राजेश राजी आपका मैसेज मिला है और आपने लिखा है कि आपको रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गर्मी कुछ कम महसूस हो रही है। जी हाँ, आज गर्मी कुछ कम है, टेम्परेचर थोड़ा कम है। और आपने लिखा है कि सीखने का प्रयास करने से सोच मजबूत होती है। बहुत सुंदर विचार, स्वागत है आपका। और आपने इस गाने को जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला थे एंजॉय किया है। बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का ये फेवरेट गाना है, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू हमारी प्रज्ञा सोलंकी, आप हमारे साथ हैं, मिसेस पे के चियांग, थैंक यू, आप सुन रहे हैं। और आपने कहा है आपको हे फीवर हुआ है, देखा मैंने कहा ना ध्यान रखो, नहीं तो ये बदलते मौसम में बस यही होता है। एनीवेज जल्दी से ठीक हो जाइए। एसएस भोगल जी स्वागत है आपका, संध्या भाव सर थैंक यू, महेंद्र पटेल जी थैंक यू, नरेंद्र बागिया जी आपने चार लाइनें लिखकर भेजी हैं और लिखा है अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है कि नजर में तुम्हारे नजारे रहेंगे, पलकों पे यूं ही चांद सितारे रहेंगे, बदल जाए तो बदल जाए ये जमाना, खुदा कसम हम तो हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू साथ देने के लिए। मधु जी स्वागत है आपका, गुरुदेव गांजा आप हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका भी। कैंट में सलमा जी सुन रही हैं, हरीश रुदा हमारे साथ है, अर्जुन जी हमारे साथ हैं, और ये हैं समीना, मैनचेस्टर में प्रोग्राम सुन रही हैं, कहती हैं बैक टू बैक गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, सो थैंक यू तोची पनेश्वर जी, ज्योति जी, सत्यनारायण सैनी भारत से, विनोद जी, रोशनी जी थैंक यू, स्वागत है आपका। और ये है मुमताज खान, प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू हमारी प्रज्ञा, कहती हैं गाने तो मैं आपके फुल वॉल्यूम पर सुनती हूँ, थैंक यू दिव्या जी, जासू जी, सहर जी, हरीश जी, वियाना से अनिल सोनी जी, मिस शेख, शरफून और जितने भी साथी घर में, गार्डन में, बाहर, काम पर, शॉप पर, किचन में, जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सबके लिए जाता है ये अगला गाना।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर मुकेश जी की आवाज में आवारा फिल्म से था ये गाना, और ये गाना सुनकर दिनेश पोपट जी आपका मैसेज आया है, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी अमिता जी कहती हैं व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, तो चलिए ये गीत आपको भी डेडिकेट करते हैं। थैंक यू मानू जी, मानू जी। और हमारी कल्पना हाथी कहती हैं भाई नॉर्वे वालों को भी याद कर लो, बिल्कुल नॉर्वे वालों का भी स्वागत है इस शो में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. This is Like a Gold. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold. Brought to you by
0: Southall Travel. तो अगर हॉलिडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिए, Southall Travel. विजिट कीजिए Southall Travel पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और विनर्स हैं ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के भी, और आप उनसे फोन पे बात कीजिए और बुक कर सकते हैं हॉलिडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स एंड होटल्स एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest

0: pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card and 36-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration. Terms at tescomobile.com/terms.
1: Riti Sharma on Like a Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Selling your van can be super simple if you choose We Buy Any Van. They're on average 11 minutes away, so you can get it all sorted in under an hour. If only they could make keeping your van clean simpler. And spotless.
5: Oh, for crying out loud.
4: We Buy Any Van. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyVan.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danu. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio,
9: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
10: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है. कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02 08 9 5 4 00 7. दैट्स 02 08 9 5 4 00 7. आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
12: ट्रेवल इन स्टाइल,
13: ट्रेवल इन स्टाइल,
12: ट्रेवल इन स्टाइल.
14: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विस. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: Be part of a historic grand opening.
10: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
10: Departure 5th of September. Call now on 02 03 773 633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद.
17: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
16: जेमीन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
18: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
19: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या

0: ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
1: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Lyca Gold and Lyca Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।

0: लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना, जिसमें आरडी बर्मन का म्यूजिक और फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है। शैलेंद्र सिंह की आवाज में डेडिकेट करते हैं हमारी संध्या भावसर को, जो बड़े ही प्यार से प्रोग्राम सुनती हैं। सपना एंड परेश जी, स्वागत है आपका। एंड दिनेश सोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। फरीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताते चलूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होती है जोड़ी नंबर वन संडे के दिन, और आज की जोड़ी है राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की जोड़ी। जी हाँ, दोनों ही अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रहे, तो आज उन्हीं फिल्मों के कुछ गाने सुनवाऊंगी आपको प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में जोड़ी नंबर वन में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो £1 आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 108.6 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो लीजिए, आज IPL का फाइनल मैच है और ये मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा, और इस आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु खेलने वाली है, और देखते हैं कि इस बार का IPL मैच कौन जीतता है। मैच का हाल हमारे यहाँ से आपको बताया जाएगा, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
5: It could be you.
4: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
6: तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
9: रामकृष्ण हरि UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
15: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
17: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444.
18: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold Greater London.

0: रविंद्र जैन के म्यूजिक पर आशा जी की आवाज में सौदागर फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आपने लता जी की आवाज सुनी, आर जी बर्मन का म्यूजिक, फिल्म का नाम जमीन आसमान। और लीजिए, दो गीतों के साथ प्रोग्राम के सेकंड आवर की शुरुआत हो गई, और इस आवर में मैं आपको सुनवाती हूँ जोड़ी नंबर वन, जिसकी शुरुआत करने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में। और आज की जोड़ी नंबर वन है राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी। लेकिन उससे पहले आज मैं इतिहास के पन्नों को खोलने वाली हूँ और बात करने वाली हूँ उनके बारे में, जिनके बारे में शायद आप जानते हों या शायद नहीं भी जानते हों, लेकिन जानना जरूरी है। तो चलिए बात करती हूँ आज अहिल्याबाई होलकर की। आज ही के दिन वो बोर्न हुई थी इन 1725 में। बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, इसीलिए तो कहा कि इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। और अगर अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो ये जो दर्शन मंदिरों के हम करते हैं ना, जो हम सभी के फेवरेट मंदिर हैं, जिसमें शामिल है काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गया और जितने भी मंदिर हैं, इन सब का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। और इसीलिए अहिल्याबाई होलकर हमारे भारतीय इतिहास की उन महानतम महिला शासकों में से एक हैं, जिनकी कुशलता, न्यायप्रियता और धार्मिक निष्ठा के लिए उन्हें राजमाता या पुण्य श्लोक कहा जाता है। आज ही के दिन 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंडी गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता मनकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस दौर में लड़कियों को शिक्षा ज़रा कम ही दी जाती थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। और जानते हैं, उनके सरल स्वभाव और उनके चारित्रिक गुणों से प्रभावित होकर महाराणा साम्राज्य के सेनापति मल्हार राव होलकर ने अपने पुत्र खांडे राव होलकर से उनका विवाह करवाया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर का जीवन दुखों से भरा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1754 में कुम्हेर के युद्ध में उनके पति खांडे राव शहीद हो गए, और उस समय सती प्रथा चलती थी। वो सती होना चाहती थी, अपने पति के साथ अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि तुम एक कुशल शासक बन सकती हो, तुम क्यों नहीं इस राजपाट को संभालती हो। और इसके बाद उन्होंने अपनी ससुर की बात मानकर राजपाट को संभाला। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनके ससुर का भी देहांत हो गया, और बाद में उनका एक पुत्र था वो भी एक युद्ध में मारा गया, और उसके बाद इंदौर के राज्य की पूरी कमान अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आ गई। उन्होंने 28 साल तक सफलतापूर्वक राज्य किया, और उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर नर्मदा के तट पर महेश्वर को बनाया। अगर आप कभी महेश्वर गए हो तो आपने देखा होगा, बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ महारानी अहिल्याबाई होलकर का किला है, उनका महल है, और महेश्वर की साड़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं। कभी मालवा घूमकर आइए और महेश्वरी की साड़ी लेकर आइए, मज़ा आ जाएगा पहनकर। वो एक बहुत अच्छी राजा बनी, जनता की फरियाद सुनती थी, और राज्य में न्याय जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सत्य के आधार पर करती थी, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन सबसे ज़्यादा याद उन्हें इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का, मंदिरों का, घाटों का और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। जैसे काशी विश्वनाथ, औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने पर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया। और जब मैं सोमनाथ मंदिर गई थी तो वहाँ भी मुझे पता चला कि सोमनाथ मंदिर जिसे तोड़ दिया गया था, जिस पर 17 बार आक्रमण हुआ था, उसे अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया, और बाद में जहाँ असल मंदिर था वहाँ भी मंदिर बनाया गया। तो अगर आप सोमनाथ जाते हैं तो वहाँ अहिल्याबाई होलकर का शिव मंदिर भी अभी भी है, जहाँ के मैंने दर्शन किए हैं। और उसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब मंदिरों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया। तो इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज शायद जान गए होंगे, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और आज यही जन्मी थी। और ऐसे बहुत सारे हमारे पुराने राजा, रानी, देश के सेवक रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम फिल्म स्टार्स के बारे में तो बहुत बार सुनते हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता होता। तो सोचा क्यों ना आज इनके बारे में बात की जाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब शुरू करते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो जोड़ी नंबर वन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.3 भारतीय रुपए। और इसके अलावा एंड ऑफ जून तक अगर आप 1000 pounds ट्रांसफर करवाते हैं तो आप 75 pound का वाउचर ले सकते हैं, एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Here at the Money Supermarket Training Academy, we're training our recruits to save people money on their car insurance. But that's not all. Here comes one now. Let's put them to the test. What do we do for our customers on top of saving them money on their car insurance?
3: We give them a £15 reward.
2: And?
3: When they keep on switching with us, they get more and more rewards.
2: Very good. Scarily impressive.
4: Money Supermarket, where better off begins. Download the app today. Rewards include prepaid MasterCard, qualifying purchase with logged in account, 18 plus UK only. See site for T's and C's.
5: Ye hai.
6: Leica Gold.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
15: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
16: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
17: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
16: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
17: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
16: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
17: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
16: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
18: London, good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
19: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
20: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
6: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
19: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
21: Feel the fun. Play Ojo.
22: 18 plus gamble aware.
15: Like a Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना फिल्म सूरज से लिया था। और वैसे तो ये जोड़ी सुपरहिट है और इन दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और जब भी इस जोड़ी की बात आती है तो मुझे सबसे पहले यही गाना याद आता है और यही गाना आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए आज के प्रोग्राम की जोड़ी नंबर वन की शुरुआत इसी गाने से की। और आप भी बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं लेकिन दो ही गाने बजाती हूँ तो देखती हूँ कि दूसरा गाना कौन सा है। लेकिन बता दूँ कि अगला गीत मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मधु को, जिनकी सहेलियों ने, जिनकी फ्रेंड्स ने, जिन्हें वो टीम ए कहती हैं, उनके लिए एक सरप्राइज 60th बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया है जिसमें नाम है नीतू, कंचन, भावना, जोशुआ, प्रीति, दीपिका। तो भाई सबकी ओर से मधु जी एंड ऑफ कोर्स मेरी ओर से भी आपको भी हैप्पी बर्थडे। और ये जो गाना है हमारी जोड़ी नंबर वन का अगला गीत आपको डेडिकेट करते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाजों में साथी फिल्म से था ये गाना, और ये गाना नाम करते हैं अमिता जी के, जो कहती हैं क्या वर्ल्ड क्लास गाने हैं, चलिए आपके नाम किया। और साउथ हॉल से मैसेज आया है राज राम गुलाम जी का, आपको भी ये जोड़ी और ये गाने पसंद आ रहे हैं, थैंक यू।

0: पटेल जी, आंटी जी कहती हैं ये तो मेरी फेवरेट जोड़ी है। संध्या वाव सर कहती हैं वाव। चलिए तो आप सबको जोड़ी इतनी पसंद है और आप सबको इतनी पसंद है तो सोच रही हूँ इस जोड़ी का एक गाना और सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
0: तो अगला गीत सुनाने से पहले आपको याद दिला दे कि भाई आप भी अगर मेरी तरह किशोर कुमार के फैन हैं तो तैयार हो जाइए क्रेजी फॉर किशोर के लिए। एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय एंड दी 515 बैंड और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19th जून को एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल है eventbrite.co.uk पर या फिर कॉल कर सकते हैं आप 0208-515-5400 पर। आई रिपीट 0208-514-5400 और याद रखिए लाइका गोल्ड रेडियो है इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स।
2: दिस इज रितु शर्मा।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तान रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So gold rate is 108.6 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच में आईपीएल का फाइनल मैच है जो शुरू होगा दोपहर के 3 बजे से और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। दिस इज लाइका गोल्ड।
4: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: Discover Malta and Gozo with a twin centre island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 line. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: લંડન વોલ્યુમ વધારી દો આ 20 જૂન બોલિવૂડ ની પાવરફુલ વોઇસ ભૂમિ ત્રિવેદી આવી રહી છે લંડન
12: રામ ચાહે લીલા ચાહે લીલા ચાહે
11: ધમાકેદાર મ્યુઝિકલ નાઇટ માટે રેડી થઈ જાઓ
12: ઉડી ઉડી જા
11: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 PM to 11 PM. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Leica Radio.
13: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077। दैट्स 02089540077। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
14: ट्रेवल इन स्टाइल।
15: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस माँ भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग माँ दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा में जोड़ाओ अपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
16: क्लासिक्स टू मेक योर वीकेंड्स फील गुड। दिस इज रितु शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: क्या खूबसूरत गाना लिखा है संतोष आनंद ने और क्या खूबसूरत धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरा फेवरेट गाना, और विजय जी आपने सही कहा, बहुत दिनों बाद आज इस गाने को मैंने प्रोग्राम में प्ले किया है और आप सब इंजॉय कर रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे विजय जी कहते हैं कि ऋतु पता ही नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए, तो मेरा भी हाल यही है आप सबके साथ, मुझे भी नहीं पता चला ये 2 घंटे कब निकल गए और कब हम लास्ट एंड फाइनल आवर में आ गए हैं। थैंक यू एसएस बोगल जी कहते हैं चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, मेरा फेवरेट गाना है। तो आपको बता दूँ सेम टू सेम मेरा भी फेवरेट गाना है और आपको डेडिकेट करते हैं सर। थैंक यू संध्या भाव सर, ऑफकोर्स हमारी संध्या भाव सर, थैंक यू दिनेश सौरी जी, प्रीति बेल्जियम से थैंक यू, हैना जी एंड हमारे नरेंद्र पांचाल जी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा रेस्ट कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू रागिनी जी, वत्सला जी, मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं आपने आस के पंछी का गाना नहीं चलाया, हाँ बजा दूंगी किसी दिन, पक्का बजाऊंगी, अब मैं दोबारा जब जोड़ी लेकर आऊँगी तो वो गाना बजाऊँगी। थैंक यू शेखर आनंद जी हमारे साथ हैं, रश्मि गनात्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए और आपको जोड़ी बहुत पसंद आई, कहती है मेरी फेवरेट जोड़ी है। मिस्टर नरेंद्र पाथिया के फोर्स हमारी आंटी जी नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सब तैयार है ना आज के 3 वर्ड्स गेम को खेलने के लिए, चलिए फिर।
1: ये है लाइका गोल्ड,
0: तो इस आवर में हम 3 वर्ड्स गेम खेलते हैं और ये 3 वर्ड्स बॉलीवुड के गाने से मैं पिक करती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज के 3 वर्ड्स में पहला है उल्फत, दूसरा वर्ड है याद और तीसरा है चिराग। सोच रहे होंगे ऋतु कितना आसान गाना बताया है लेकिन फिर बता दो, चलो पहला है उल्फत, दूसरा है याद, तीसरा है चिराग। रफ़ी और लता जी की आवाज़ें हैं, 1963 की फिल्म है, नौशाद जी का म्यूज़िक है। अगर आपको पता है तो देर किस बात की है, फटाफट बताइए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भिजवा कर।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको WhatsApp नंबर अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि आज भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं तो 1 pound आपको देगा 127.3 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफ़र आपको करवाना होगा बाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग दी यूनो SBI UK मोबाइल ऐप। और एंड ऑफ जून तक आप विन कर सकते हैं 75 pound का वाउचर एवरी डे वन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और एक बार फिर से आज के 3 वर्ड्स रिपीट करते हैं। पहला वर्ड है उल्फत, दूसरा वर्ड है याद और तीसरा वर्ड है चिराग। रफ़ी जी, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ें हैं, 1963 की फिल्म है, नौशाद का म्यूज़िक है। कौन सा है ये गाना बताइए जरा, इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवाकर।
2: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: 3 heroes, 1 mission, to hijack snacks. Introducing new corn protein bites.
4: Wait, are we the heroes?
5: Of course we're the heroes.
3: These snacks are high in protein and ready to eat.
4: Why are you doing the serious voice?
5: Yeah, why are you doing the serious voice?
6: I was trying to make it cooler.
3: Find new corn protein bite snack bags in supermarkets nationwide. Corn, so tasty. Why choose the alternative?
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their 3rd branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
10: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away. so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car, selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
9: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 0239635757. Greens by Danu. Prime location,
9: high appreciation
11: in Dubai.
12: बोले तू क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
14: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
15: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र.
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
16: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
17: Packed for the trip? Gifts? Passport?
18: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
17: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
18: Simzy?
17: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
19: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
20: T's and C's apply.
21: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
22: Atif Aslam live in the UK.
21: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
22: Book your tickets now at AXS.
21: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
22: Exclusive radio partner Leica Radio.
23: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
24: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
25: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
24: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
25: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
24: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
25: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
24: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPA.
26: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
27: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: यस, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गाना आशिक की फिल्म से आपने सुना। और अनुराधा पौडवाल ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक बात बता दूं कि ये फिल्म महेश भट्ट ने बनाई थी और महेश भट्ट चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा भट्ट इस फिल्म में काम करें, लेकिन पूजा भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और फिर एंट्री हुई अनु अग्रवाल की, और देखिए अनु अग्रवाल ने जिस फिल्म में अच्छा काम किया और आज तक वो इस फिल्म के लिए जानी जाती हैं। और इस फिल्म में था नदीम श्रवण का सदाबहार म्यूजिक। और आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर ऋतु शर्मा आपके साथ है।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं मुझे। हरीश खत्री जी कहते हैं, कुमार सानू का ये मेरा फेवरेट गाना है, मेरे नाम कीजिए। चलिए, मैंने आपके नाम किया। एंड आपके बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, थ्री वर्ड्स गेम के आंसर्स मिलते जा रहे हैं। एंड मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं कि आज ऋतु मैंने गाने को जानने के लिए गूगल की मदद नहीं ली, आज मैंने अपने आप गाना पहचाना है। तो अयूब जी, आज आपको 10 में से 20 बोनस नंबर देती हूँ, ठीक है। और अगला, ये जो ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का गाना है, ये भी सबके साथ साथ आपके भी नाम करते हैं।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, उमा देवी की आवाज़ में था ये गाना और हमारे राजेंद्र सिंह कालरा कहते हैं कि काश उमा देवी ने कुछ और भी गाने गाए होते और हमें उनकी आवाज़ में कुछ और गाने गाने को मिलते। आवाज़ तो उनकी बहुत अच्छी थी।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना सुनवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे किन साथियों ने आज के गीत को सही सही पहचाना है। सबसे पहले जवाब दिया है एजाज जी आपने चैशम से, उसके बाद शरफून योर आंसर इज करेक्ट, मनीषा शाह, रजनीश, गुरशरण, वत्सला जी, प्रीति हाजरा, विजय गुडूरी जी, दिव्या हैरो से, करसन पिंडोरिया जी, सहर, दिनेश पोपट जी, रोशनी जी, सलमा जी, तोची जी, कुकी, संध्या भाव सर, आयुब चौहान जी, अमर जी एंड रानी जी स्लाव से। आप सभी ने बिल्कुल गाने को सही पहचाना है, तो वो गाना बहुत सुंदर है, बजाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनवा दूं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का।
1: रिची शर्मा ऑन लाइक अ गर्ल।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: पड़ेगा।
1: अरे मुझे हमारे साथियों ने याद दिलाया कि ऋतु ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कलर्ड गाना था। कलर्ड था, मैं तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजिन कर रही थी। आप भी ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेजिन कर लो, गाना तो अच्छा था ना। मुझे लगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट गाना है। एनीवेज गाना तो मैंने आपको सुनवा दिया और आपने इंजॉय भी किया, और अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गीत जो आप सभी का फेवरेट है एंड मुझे भी बहुत पसंद है, और आप में से आज सबने सही जवाब दिया है, किसी ने भी गलत नहीं दिया। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको वो गाना।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि समर चल रहा है और कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साउथहॉल ट्रैवल विजिट कीजिए और उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। 40 सालों से ट्रस्टेड आपके ट्रैवल एजेंट हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड जीत चुके हैं

0: लीजिए मेरे महबूब फिल्म से था ये गाना जो 1963 में आई थी, नौशाद का म्यूजिक था और हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना था। और इस गाने को सुनकर वत्सला जी कहती हैं कि आपने तो मेरा दिन बना दिया इस गाने को बजाकर। चलिए ये गाना जिनका फेवरेट है, एजाज जी कहते हैं आपका फेवरेट है, सभी के नाम पर जाता है। और बस अब तो जाने की बेला आने ही वाली है, जाते जाते एक गाना और सुनवाऊंगी। लेकिन बता दूं कि ये जो फिल्म थी ना, इसने बहुत सारे नॉमिनेशंस पाए थे और ये फिल्म 1963 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके गाने आज तक सभी को पसंद है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Ye hai Leica Gold. Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 108.6 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
5: Ye hai Like a Gold, 10:35 a.m.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज IPL का फाइनल मैच होने जा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच में, और ये मैच शुरू होगा दोपहर के 3 बजे से। और मैच का हाल जानने के लिए आप हमें सुनते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
0: तो लीजिए बस अब जाने की बेला आ ही गई है, अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज़ तक। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक मुझे ढेरों मैसेजेस भिजवाए हैं, मेरा साथ दिया है शो में और अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी और मेरी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरे पास अनुराग होंगे गोल्ड पर, फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर, एनानिका होंगी लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को अपने कन्वीनियंट टाइम पर दोबारा सुन सकते हैं। और लाइका गोल्ड के गाने नॉनस्टॉप सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड 2 ऑनलाइन। 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका रेडियो 90s ऑनलाइन। और पंजाबी गीतों के शौकीन है तो सुनिए लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। यानी कि बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए। तो बस थैंक यू कहना चाहती हूँ, अगले गीत को एंजॉय कीजिए और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे बाय बाय कह दीजिए। मौसम अच्छा है, मजे कीजिए, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
1: This is Leica Gold.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables, available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
10: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
9: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
10: गारंटेड
9: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
10: फोन 02085748410।
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
16: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
15: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
16: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
17: अप नेक्स्ट, गोल्डन रॉक विद अनुराग ऑन लाइक अ गोल्ड. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लता जी और नितिन मुकेश साहब की आवाजों में नाखुदा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। 1981 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म का ये गाना बड़ा ही कमाल का है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, जो मुझे लगता है कि आप लोग इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि मेरे आने से पहले ही आप लोगों के संदेश आ जाते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का, जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। अब है बारी हमारी। जी हाँ, सुपर संडे वाली महफिल में आप सभी का है एक बार बहुत बहुत स्वागत। दो गाने हमने आपको इसीलिए सुनाए और पहले इसीलिए बोला था इंटरव्यू में कि भाई इत्मीनान से बैठ जाइए, ये गाने जो है ना चलते फिरते नहीं सुने जा सकते। हाँ, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि मैं आज करीब अपने घर से स्टूडियो तक आते वक्त मैंने एक घंटे की ड्राइव की, जो कि नॉर्मली वीकडेज में डेढ़ घंटे के आसपास होती है, 1.5 आवर। लेकिन आज मौसम भी अच्छा था, थोड़ी सी विंडो खोल के थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक करके, जब कभी कभी सिग्नल में रुकना पड़ता था तो आजू बाजू की गाड़ियां जो खड़ी होती थी वो देखती थी क्या अब चल रहा है यार, कौन सा म्यूज़िक है। लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, कोई पहचान सिर्फ उसकी दिल से होती है। तो कोई भी म्यूज़िक है वो आप उसे एंजॉय करें, और हम तो लेकर आए हैं आपके लिए गोल्ड पर सुरों का, क्लासिक सुरों का खजाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुपर संडे वाली महफिल में आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला गाना रवि साहब और आशा दाई की आवाज में, बड़ा ही झन्नाटेदार।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.30। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: राम कृष्ण हरी। UK तैयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
10: London, this 20th June, Bollywood की powerhouse voice भूमि त्रिवेदी आ रही है live in London.
11: राम चाहे लीला चाहे लीना चाहे।
10: Get ready for one unforgettable night of music, dance and full on energy.
11: उड़ी उड़ी जा, उड़ी उड़ी।
12: presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi Live in London. Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: Travel in Style specialise in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Fully bonded, Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
15: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
16: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
15: યુરોપના 3 થી 9 દિવસના ટૂર્સ,
16: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
15: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
16: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
15: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
16: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
17: લન્ડન, ગુડ ન્યૂઝ, આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ TRS કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મે. હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ બેટર પ્રાઇસિસ, પરફેક્ટ ફોર રિટેલર્સ, ટ્રેડર્સ, ટેકઅવેઝ એન્ડ કેટરર્સ. આઈટેક ઇઝ ઓપન 24/7 વિથ ફ્રી પાર્કિંગ. વિઝિટ આઈટેક એટ યુનિટ 123 સાઉથ બ્રિજ વે, સાઉથ હોલ, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
18: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
19: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
20: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Dorado.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
0: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: रवि साहब और आशा दाई की आवाजों में ड्यूट गाए हुए तमाम गानों में से एक गाना ये भी कमाल का, एक फूल दो माली फिल्म का एक गाना। हालांकि इस फिल्म के रवि साहब ने फिल्म का संगीत दिया था, लेकिन सारे के सारे गाने अगर आपको याद हो तो ये पर्दा हटा लो, उस दौर का बड़ा ही कमाल का गाना और फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग। और अगर बात करें इसके फिल्म के अन्य गानों की तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में तुझे, सूरज कहूँ या चंदा और वो नन्हे फरिश्ते आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं, कमाल का गाना। आगे बढ़ेंगे और एक और सुरों के बाद शाह दिग्गज मुकेश साहब की आवाज़ में और उनके साथ हैं वाणी जयराम, वही पॉपुलर सा गाना जो आप अक्सर हमारे स्टेशन में सुनते रहते हैं, लेकिन आज उसे अलग अंदाज में सुनाते हैं आपको। अंदाज आपका अलग होगा, गाना वही होगा।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: भाई फूलों से तो नहीं, लेकिन सुरों से आपका दामन भरा रहेगा, आंगन भी भरा रहेगा। हमारे साथ बने रहें, छोटे से ब्रेक के बाद एक और प्यारा सा गाना आपको।
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Ya Wo. Only on Like a Gold.

0: लंच ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
1: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ऐसे तो ना देखो, रफी साहब की आवाज में जादू बिखेरता है ये गाना। तीन देवियां फिल्म से भी आप सुन रहे थे। और बस अगले गाने के बाद हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट सॉन्ग के बाद आप बताएं, और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हो जाइए तैयार।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone. LemFi

0: लता जी और किशोर दा की आवाज में सुन रहे थे आप शर्मीली फिल्म का ये नगमा। और अब आपको बताने का वक्त आ चुका है, आप बताओ हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। भाई एक कहावत है कि अगर राह सही हो तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, और आज का गोल्डन वर्ड भी वही है, राह या फिर रास्ता। याद रखिए आपको भी अब सही राह पकड़नी है और हम तक शुरू की इस महफिल की मंजिल तक पहुंचना है। राह या फिर रास्ता, ये दोनों गाने, ये दोनों शब्द हैं आपके पास, जिसे आपको अपनी फरमाइश के पिटारे से निकाल कर उससे रिलेटेड गाना हम तक पहुंचाना है। सुनते रहें राह और रास्ता।
1: ये है लाइका गोल्ड। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो अब से लगभग एक घंटा आठ मिनट बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने जा रहा है महामुकाबला यानी फाइनल। तैयार रहिए आप लोग, किसे जिताने वाले हैं?
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
3: Was it floor two or three?
4: I swear I parked here.
3: Where is it?
2: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour our line.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
9: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
8: So where do we find something like that now?
9: Right here in London. Baidyanath Sidhayu hair oil, shampoo and toothpaste. Pure Ayurvedic. Premium and made it the way our eldest used it.
10: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
11: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
12: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
11: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
17: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
18: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
17: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
19: ऑन राग विद गोल्डन राग।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji aur Mukesh sahab ki awaaz mein mere hamsafar film ka ye gana Jagdish ji, Rajneesh ji aur Komal ji ki taraf se hum tak pahunchaya gaya tha. Bahut bahut shukriya aap teenon ka hi. Agla gana bada hi logon ne ise pasand kiya hai, isiliye humne iso थोड़ा सा ऊपर रखा है, लेकिन इरादा ये था कि आपको पहले सुनाए. लेकिन चलिए, देर दुर्घटना से देर वाली, अगला गाना किशोर दा और लता जी की आवाज में.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: तो भाई, जब किशोर दा की बात चली रही है तो किशोर दा के फैंस के लिए एक क्रेजी नाइट का बंदोबस्त कर दिया गया है. स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड. और ये इवेंट हो रहा है फ्राइडे 19 जून को. वेन्यू है प्रिंस रेजेंट होटल, चिंगवेल, एसेक्स. टिकट्स अवेलेबल हैं eventbrite.co.uk और कॉल कर सकते हैं आप 02085451454000. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: किशोरदा की आवाज में जोशीला फिल्म का ये गाना भेजने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप चारों ब्यूटीफुल लेडीज के लिए, नीलम जी, संतोष जी, सपना जी एंड हंसा मिस्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। कमाल का ये गाना था। अगला गाना लता जी की आवाज में आ रहा है, आज की थीम को ध्यान में रखते हुए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के through Indian currency में मिल रहे हैं 1 pound के बदले 127.71, Pakistani rupees 374.71, Sri Lankan rupees 443.72, Bangladeshi taka 165.27 and 1 US dollar 1.34.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £108.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय Remitly. सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद Remitly's ग्रेट रेट्स एंड लो फीस. Remitly, प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट.
0: गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच 3 बजे मुकाबला शुरू होने वाला है, जो कि है फाइनल का मुकाबला, जहां आरसीबी ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. Leica Radio Network, ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस ग्रेटर लंदन.

0: दर्द सीने में छुपा लेते हैं। भूपेंद्र सिंह साहब की आवाज, दर्द फिल्म का ही ये गाना भी आप सुन रहे थे। और अब वक्त आ चुका है आपके साथ शेयर करने का आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। यकीन मानिए बहुत बहुत दिमाग को कसरत करानी पड़ी इन तीन गानों को चुनने के लिए, क्योंकि ऐसा ना रहे कि सिर्फ एक गाने की तरफ झुकाव रहे आपका। तो कायदे प्लस कानून ये है इस खेल के कि हम आपको तीन ऑप्शन देंगे ए बी एंड सी, जो कि गानों के होंगे, और जिनमें से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आता है उसे आप वोट की तरह कास्ट करेंगे, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज का बनेगा गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग का, प्यार किया तो डरना क्या, फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम। ऑप्शन बी है अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई। ऑप्शन सी है हम सफ़र मेरे हम सफ़र, मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना, पूर्णिमा फिल्म से है। तो ये रहे आपके साथ तीन गोल्डन राग के ऑप्शंस। एक बार फिर से रिपीट करता हुआ, ऑप्शन ए है प्यार किया तो डरना क्या फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम, ऑप्शन बी है अजीब दास्तां है ये, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई, एंड ऑप्शन सी है हम सफ़र मेरे हम सफ़र, फिल्म का नाम है पूर्णिमा। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। वैसे भी फाइनल है मुकाबला, जब तक है मौका लगाते रहें चौका।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में मिल रहे हैं 127.30। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
3: Leica Gold.
2: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: हमने रख तो ली तस्वीर तुम्हारी लाल दुपट्टा मलमल का, इसलिए हमने ये गाना आपको सुनाया क्योंकि ये गाना है हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में, साथ में हैं उदित नारायण जी। एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, कानपुर को ध्यान से काम पर लगा दीजिए और सुनिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, प्यार किया तो डरना क्या, फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम। ऑप्शन बी, अजीब दास्ता है ये, फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई। ऑप्शन सी, हम सफर मेरे हम सफर, फिल्म का नाम है पूर्णिमा। वोटिंग लाइन्स हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: money.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: भाई शुरू के साथ खेल पर भी ध्यान रखें और अपने अपने वोट कास्ट करते रहें. अगला गाना हम आपको विंटेज गोल्ड वाली महफिल से चुरा कर सुना रहे हैं. फिल्म का नाम है श्री 420.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Vintage Gold वाला गाना सुनने के बाद अब आपको बता दें कि भाई घतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग के बाद बंद हो जाएंगी वोटिंग लाइंस। इसलिए आखिरी है मौका, लगा दीजिए चौका और करते हैं भाई वोट्स। हम चाहते हैं थोड़ा ही सा फासला रह गया, अगर आपको अपनी मन पसंद ऑप्शन वाला गाना ही सुनना है तो थोड़ा और जोर लगाइए।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Like a Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris or timeless beauty of Italy ke through.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
13: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
18: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
17: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
19: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
20: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
21: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
19: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
20: Thanks, playtime's over. Mmm. Lovely.
0: Feel the fun.
21: Play 18 plus gamble aware.
1: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
22: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने जिस गीत के साथ किया, मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर पसंद किया होगा। फिल्म का नाम था दिलवाले। आते ही कोई कहती आई लव यू या सुनने को मिल जाए आई लव यू तो कितना अच्छा लगता है। और दूसरा गीत भी बहुत खूबसूरत, फासले फिल्म से चुना था, 1985 की फिल्म थी और फर्स्ट सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म दिलवाले, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ें, एंड दूसरे गीत में किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज़ें। दोनों के दोनों गीत मैंने आपके नाम किया। जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने सरिता चुन चुन कर लाई है आप ही के लिए। आपके मन को भा जाएं तो मुझे आपकी तरफ से इशारा चाहिए। जहां भी बैठे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से इलाके में सुन रहे हैं। आप मिडलैंड्स में हैं, मैनचेस्टर में हैं, लंदन में हैं, ग्रेटर लंदन के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सुन रहे हैं, ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं, या फिर आपने ऑनलाइन इरादा किया सुनने का, या फिर फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं, 1035 पे सुन रहे हैं, मैनचेस्टर की फ्रीक्वेंसी पे, जैसे भी सुन रहे हैं, आप मुझे अपने होने का एहसास दिला दें। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं स्टूडियो में, मेरे आसपास आप सभी हैं। वैसे तो स्क्रीन पूरी की पूरी फुल है, हो चुकी है और आपके मैसेजेस आना शुरू भी हो गए और कुछ को तो मैंने जवाब भी दे दिया। थैंक यू सो मच कि बड़े प्यार से आप पूरे 4 बजे मेरे साथ जुड़ जाते हैं। इस 4:15, आइए सुनते हैं ये वाला मैसेज और उसके बाद एक और बड़ा प्यारा गीत है। हाँ, क्या आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में? कोई वर्ड है जो दोनों गीतों में सुनने को मिला था? अगर उस वर्ड पे आपको भी कोई गाना याद आ रहा है तो ज़रूर बता दें, मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंद को मैं पूरा कर पाऊँ। तो अब पहले मैं ज़रा ये काम कर लूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today up to 127 rupees and 25 paisas. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. Travel in style ka vaada hai. Kahin bhi ghoom kar aaiye. Flights aur holidays ki best prices ke liye hamare paas aaiye. Apne early bird discount ke liye number milaiye. 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Aapki man ki tasalli ke liye ye fully bonded hai.
3: Travel in style. Travel in style. Travel in style.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: London make महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA7 4LF। फॉर मोर डिटेल्स सोमयज्ञ.com कॉल 0793262388। 8852।
7: चलो जाइए एक नवा सफर पर
8: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
9: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ
8: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
9: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
8: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
10: यू नो हाउ यूके वेदर कैन डू फुल ड्रामा विद आवर हेयर। वन डे फ्रिज, वन डे फ्लैट। That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
11: Bole, tune kya kar raha hai re?
12: Are guru, aapke show ki ticket dhoond raha hu.
11: ये तो बताओ कोई पता चला?
13: गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
14: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
16: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
17: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
18: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
17: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
18: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
17: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
18: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
17: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
19: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, You come again and again.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
21: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
22: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ऑटोट्यून, कितना प्यारा संवाद और कितनी प्यारी प्यारी बातें। बहुत सुंदर गीत था। आप जानते हैं किस फिल्म का गीत था? नहीं तो मैं बता देती हूँ, फिल्म का नाम था भीगी पलकें और इस फिल्म में काम किया था राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था जुगल किशोर ने एंड तिलक राज, और इस गीत को लिखा था MG हशमत साहब ने, और उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद भी किया। हरप्रीत, आपने एक गीत की रिक्वेस्ट की है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, आ रहा भाई, वो भी गीत आएगा, ज़रूर आएगा। थैंक यू एवर सो मच, आपने मुझे उसका लिंक भी भेज दिया इन केस आई कॉन्ट फाइंड इट, थैंक यू सो मच। संध्या भाव सर बड़े प्यार से सुन रही हैं और कहती हैं जन्म वर्ड जो है बार बार आ रहा है। यस यस, आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? आ रहा है तो बता दीजिएगा मुझे। और आप हैं सीमा हियाती, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। तोची जी, सलमा इन मेडस्टोन, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, दिव्या इन हैरो, उल्लास इन टोरंटो, दिनेश पोपट जी, वत्सला जी, फरीदा गुलाम अली जी, संतोष जी इन हैरो, सहर, हना, भारती जी, हंसा वोरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से साथ देते रहिएगा, मेरा वादा है अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुँचाती रहूँगी। एंड किशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ लें और ये बता दें कि ये गाना जो भीगी पलकें से था, ये आप तक किसने पहुँचाया?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold.
0: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए आप मेरी आवाज़ अपने घर तक पहुँच, मेरी आवाज़ आपके घर तक पहुँच रही है। कार्स में है तो कार में पहुँच रही है, गार्डन में बैठे धूप का मज़ा ले रहे हैं तो वहाँ पर सुन रहे होंगे, पड़ोसियों को भी सुना रहे होंगे, नेबर्स भी खुश हो रहे होंगे कि बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं उन्हें। लेकिन आज मुझे लगता है ज़्यादा लोग अंदर बैठे हैं क्योंकि आँखें तो उनकी टेलीविज़न पर है ना। आज तो इतना बड़ा मैच हो रहा है तो सभी टेलीविजन देख रहे होंगे, देखते रहिए, वहाँ देखना मना नहीं कर रही है सरिता, लेकिन कान इस तरफ होने चाहिए, ओके? क्योंकि अगला गीत जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसके बिना तो आज के प्रोग्राम का फर्स्ट आवर अधूरा रह जाता। कौन सा गीत हो सकता है? चलिए सुनिए, प्यार से सुनिए, गुनगुनाइए साथ साथ, गाना चाहें तो गाएं, खुल कर गाएं, और अगर इंजॉय करना चाहते तो ऐसे ही बैठ के इंजॉय कीजिएगा।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: उस्तादों के उस्ताद, उस फिल्म से चुना गया गीत उलाशी की लिखती है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद आया ये गाना। थैंक यू, मुझे मालूम है उलाश आपके साथ साथ बहुत से मेरे साथियों ने इस गीत को गुनगुनाया भी और पसंद भी किया। और हरप्रीत आपने भी लिखा है कि मुझे जो इमोशनल गाने होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू एवर सो मच। और अब ज़रा ये काम हो जाए और उसके बाद क्रिकेट का स्कोर भी बताना है। यस बताएं, जरूर बताएंगे, थोड़ा इंतजार।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Fever Tree Mexican Lime Soda. You're not like other mixers. Your zesty bite, twist of yuzu. Sure, you're perfect with vodka. But even on your own, you make the most exquisite soft drink. Fever Tree, straight up or mixed, it's a matter of taste.
4: ये है
5: Like a Gold
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposables. Disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: London, this 20th June, Bollywood ki powerhouse voice Bhumi Trivedi aa rahi hai live in London.
11: Ram chahe leela chahe leena chahe.
10: Get ready for one unforgettable night of music, dance and full on energy.
11: Udi udi ja.
10: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner, Laika Radio.
12: राम कृष्ण हरी, UK तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जूनला होते आहे वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
13: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
14: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
15: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
13: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
14: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
16: Feel the fun. Play Ojo.
17: 18 plus, gamble aware.
18: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
19: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
20: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020 8767 2142.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
21: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मुकेश जी की आवाज़ में एक गीत सुनना चाहती थी, सीमा हया थी। सीमा, मुझे उम्मीद है कि आप सुन रही हैं और इन्जॉय भी किया होगा ज़रूर इस गीत को। एंड बत्सला जी, आपने कहा कि सारे गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये गीत हमारे नाम कर दें, धन्यवाद आपका, तो हम आपके नाम करते हैं। एंड हरप्रीत, आप कहती है मेरे नाम कर दे, चलिए आपके नाम कर देते हैं। रानी ऑफ स्लाव, थैंक यू आपका भी, और आपने भी इस गीत की फरमाइश भी की थी और कहा था कि ये गाना प्रोग्राम में शामिल कर दें। एंड आप हैं सुमीला मुंगर, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद आई हैं, मैंने मिस किया आपको रियली। तोची जी, थैंक यू आपका भी। मिसेस शेख, बड़े प्यार से सुनती हैं प्रोग्राम, इन्जॉय कर रही हैं, थैंक यू मिसेस शेख आपका। तोशी अमृता जी, आप भी सुन रही हैं। अमरजीत, थैंक यू आपका भी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.77, Pakistani rupees 374.69, Sri Lankan rupee 443.52, Bangladeshi taka 165.22, Afghani is 86.13 and US dollars 1.13.

0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में है 108 pounds and 63 pence का एक ग्राम सोना.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.
1: भी जिसने भी इस गीत की फरमाइश की थी, मुस्कुरा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा. और खुशी तो होती है जब अपनी पसंद पूरी हो जाए तो. हाँ,

0: तुमसे अच्छा कौन है, ये था फिल्म का नाम जिस फिल्म का गीत आपने सुना, और उम्मीद करती हूँ इस गीत को इन्जॉय भी किया आपने। हरप्रीत, आपने इसकी लिंक भी भेजा था कि ये गाना प्रोग्राम में शामिल कर दें, तो आपके साथ साथ मेरे दूसरे सभी साथियों ने भी इस गाने को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। शम्मी कपूर और बबीता थे शायद इस फिल्म में, तो उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। अब क्रिकेट के मैच में क्या हो रहा है जान लें।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद रेमिटली, ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। रेमिटली प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट।
0: भी आज तो फाइनल मैच है, अहमदाबाद में हो रहा है गुजरात टाइटंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दे चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो गुजरात टाइटंस के 20 ओवर जस्ट कंप्लीटेड एंड दे हैव मैनेज टू मेक 155 रन्स विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। सो 20 ओवर्स का मैच है तो इन्होंने 155 रन्स ही बनाए हैं। अब देखते हैं रॉयल चैलेंजर्स क्या कमाल करते हैं और किसकी जीत होती है। ये जानने के लिए मेरा साथ देते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: जी हाँ, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं आपका स्वागत है। और सुमीला माधवानी आपने, मन्नू माधवानी आपने लिखा है कि गुड आफ्टरनून सरिता जी, इट्स ग्रेट टू लिसन टू योर वंडरफुल प्रोग्राम, कैन यू प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आशिक, 1962 की फिल्म है, तुम जो हमारे मीत ना होते, गीत ये मेरे गीत ना होते। वाह, ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग इन द नेक्स्ट आवर, सुनते रहिए। इसी तरह से सुमीला मुंगर आपने भी लिखा है, टुडेज मदर्स डे इन मॉरिशियस, ओह ओके, अगर हो सके तो एक गाना ज़रूर लगा दीजिएगा, तो कितनी अच्छी है। वेल, जितने भी हमारे लिसनर्स मॉरिशियस से हैं और सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, तो उन्हीं सभी को मैं मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माँ तो माँ ही होती है, एंड आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं ये गाना प्ले कर सकूं। विमल रायन जी, आप भी इंजॉय कर रही हैं और आपने कहा कि लवली प्रोग्राम एंड ऑल द सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल। भावना क्या कहती हैं, भावना कहती हैं सरिता क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं है, बस अच्छे अच्छे गाने सुनाने हैं। और प्रोग्राम का अगला गीत हमें न्यूज़ तक पहुंचा देगा। न्यूज़ के उस पार भी मैं सरिता आप ही के साथ रहूंगी। बता दूं कि आज भी विंटेज गोल्ड में आपका साथ निभाएंगे सुप्रतिम, सैंडी किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, तो सुप्रतिम विंटेज गोल्ड लेके आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इन मैसेजेस की तरफ, फिर एक गाना।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं, तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 01484-9963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: High Appreciation
9: in Dubai.
2: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
6: 25? Seriously?
11: Sounds like Ojo time.
6: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
11: Sorry about the wait. How can I help?
6: You can help me celebrate. I won.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
14: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
15: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
14: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
15: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
17: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
18: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
17: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मेक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
18: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
19: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स, लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे, लाइक अ गोल्ड।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत इस सावर का फिल्म कुर्बान से चुना था मैंने, और कुर्बान आज ही के दिन 1991 में रिलीज़ हुई थी। इसे दीपक कबहारी ने बनाया था, डायरेक्ट किया था, एंड विनय शुक्ला की कहानी थी। सलमान खान, आयशा जुल्का, सुनील दत्त एंड कबीर बेदी ने इस फिल्म में काम किया था, और आनंद मिलिंद का था संगीत। उम्मीद करती हूँ कि वो गीत आपने याद किया, ज़रूर इन्जॉय भी किया। तो अब दूसरा गीत जो था वो मैंने फिल्म मास्टर जी से लिया था। मास्टर जी जो थी वो कब आई थी फिल्म, आज ही के दिन इन 1985, और इस फिल्म को किसने बनाया था कि रघुवंद्र बॉब ने, और इस सॉरी के रविंद्र राव ने बनाया था इस फिल्म को, और इस फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना एंड श्रीदेवी ने। ये मास्टर जी की कहानी थी, एक मास्टर जी जो कि विडोर हैं और उनके एक छोटा सा बच्चा होता है, और वो विलेज में आते हैं एज ए मास्टर जी, और वहाँ इन्हें मिलती है श्रीदेवी जो इनसे प्यार करती है। जब मास्टर जी मना कर देते हैं तो वो ओपनली पूरे गाँव में फैला देती है कि मास्टर जी उस पर डोरे डाल रहे हैं और हमारा अफेयर है। कि अगर आपने पूरी फिल्म देखनी हो तो ज़रूर देखिएगा और बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। वैसे द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 31st of May 1985 को, एंड इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी ऑफ 1985। डिड यू हियर दिस? बप्पी लहरी कथा संगीत, और गीत आपने सुन लिया। सो दो गीत आपने सुने। ये प्रोग्राम का दूसरा आवर है और मैंने सोचा कि चलिए आज एक ही आज ही के दिन जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक और फिल्म है जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी इन 1974, फिल्म का नाम था इम्तिहान, उसके बारे में बताऊँगी बाद में। लेकिन पहले आपसे पूछ लूँ कि पहले आवर में तो आपने मेरा साथ दिया खूब, और खूब मैसेजेस भी लिखते रहे, अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नोटिस करती हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा मैसेज करती हैं, क्यों सभी मेन जो हैं वो बस लेडीज़ पे छोड़ देती हैं कि चलिए चलिए तुम सरिता को मैसेज लिख दो। तो अगर आप मेल हैं, मेल लिसनर हैं, लिख सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको ये दोनों गाने कैसे लगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Where your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 25 paisas today. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into a win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you. South or travel at all protected.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Travel in style ka vaada hai. Kahin bhi ghoom kar aaiye. Flights aur holidays ki best prices ke liye hamare paas aaiye. Apne early bird discount ke liye number milaiye 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Aapki man ki tasalli ke liye ye fully bonded hai.
13: Travel in style.
14: Halke fulke moments ko aur bhi khas banaye German snacks ke halke fulke puff bites ke saath.
15: Rice corn se bane light aur quality mein best German puff bites jo hai barbecue, lemon chili, mast masala aur Mexican salsa jaise flavors mein available.
14: German puff bites available at your nearest ethnic grocery stores.
16: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
17: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था संगीत, और इस फिल्म में काम किया था विनोद खन्ना ने, साथ में थी तनुजा एंड बिंदु, एंड मदन सिन्हा ने इसे डायरेक्ट किया था। और ये फिल्म भी आज ही के दिन 31 मई 1974 में रिलीज़ हुई थी। आपने कब देखी थी ये फिल्म, याद है आपको? फिल्म का नाम था इम्तिहान, एंड द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज अराउंड द आइडियलिस्टिक प्रोफेसर, अगेन मास्टर जी जैसे, हु डिसाइड्स टू रीफॉर्म अ ग्रुप ऑफ राउडी स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज, एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाई द 1967 ब्रिटिश फिल्म टू सर विद लव, एंड हैज़ इंस्पायर्ड द टेलीविजन सीरीज जीत एज वेल। द फिल्म वॉज शॉट इन नासिक एंड इट्स अ रीमेक ऑफ तमिल फिल्म नूथरुकु नूरु, शायद मैंने गलत ना बोला हूँ, वैसे यही ऐसी ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मेरे ख्याल में। और अगर देखी थी फिल्म तो आपको कैसी लगी? वैसे ये फिल्म अच्छी थी और चली भी थी फिल्म, एंड इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, मजरू सुल्तानपुरी जी ने सारे के सारे गीत लिखे थे, और स्पेशली एक गाना तो आप चिंतन के साथ बहुत सुनते हैं, कौन सा गाना है? रुक जाना नहीं कभी हिम्मत हार के, वो वाला गीत। तो मैंने पहले सोचा था वही गीत सुनवाऊँ, फिर मैंने कहा वो तो आप सुनते ही रहते हैं, तो आज मैंने इस गीत को जगा दी। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किए। ये गीत आप तक किसने पहुँचाया ये भी बता दूँ।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Zaheer Khan sab Karachi mein mera program sun rahe, kehte nahi nahi main male listener hu aur enjoy kar raha hu. Thank you ji, thank you so much. Aur ek bada pyara sa message ek 5 saal ke bacche ne likha tha, ab main zara dhoondti hu usko, pehle ये काम भी कर लें, बता दें आपको कि किशोर कुमार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, और वो क्या है कि एक ख़ास प्रोग्राम हो रहा है, और ये प्रोग्राम हो रहा है कब? ऑन 19 जून को एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और यू कैन कॉल 02085145400। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो, और किशोर कुमार के क्रेजी फैंस के लिए सभी किशोर कुमार के गाने गाए जाएंगे, एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय। और इसमें गाने वाली जो आवाज़ें हैं वो आपको मिलेंगी केतन जी की, उनके साथ इंद्रानी, संजय एंड ऑल्सो द 515 बैंड।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: जबक से चुना है इस गीत को, 1961 की फिल्म थी। ऐसे जेम्स कहाँ मिलते हैं?

0: किरण आपके नाम किया मैंने इस गीत को। नाजिया शकील आप भी सुन रही हैं, आपके नाम हंसा वोरा जी, आपका मैसेज भी मिल गया। अरुणा जी थैंक यू आपका भी। फरजाना आप भी सुन रही हैं। विमल रायन जी, मनोज मधवानी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो प्यारा सा मैसेज लिखती हैं, हेलो सरिता आंटी, माई नेम इज़ क्यान एंड आई एम 5 years old। प्लीज से माई सिस्टर मरिया मरिया हु इज 9 years old बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एज शी गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन जिमनास्टिक टूडे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। थैंक यू सो मच मरिया को बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू सो मच कियान फॉर लेटिंग मी नो। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बिग हग to your sister Maria. I hope मैं उनका नाम ठीक ले रही हूँ। आपकी मम्मी आई थिंक उनकी आईडी से आपने ये मैसेज मुझ तक पहुँचाया है। इला शाह जी थैंक यू सो मच, आपको भी और आपके सारी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक।
1: Like extra podcast updates.
0: राइट भी इस बारी का एपिसोड 18 क्या कहता है, इट्स अबाउट मेनोपॉज एंड होस्ट कर रही हैं रूबी रजा। आर हॉट फ्लश इज स्टिल हश हश इन अवर कम्युनिटी एज साउथ एशियंस डू वी डाउन प्ले द चेंजेस इन वुमेन सपोर्ट दैट लव्ड वंस कैन गेट गिव अवर मॉम सिस्टर्स वाइफ्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स एंड जहाँ ज़रूरत होती है क्या हम उन्हें इसके द्वारा मतलब इसके बारे में बताते हैं, नॉलेज भी देते हैं एंड कंफर्ट भी करते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न एंड इसके अलावा एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। लाइका गोल्ड ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14-21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 0793262 3852।

0: What a beautiful song, Asha Bhosle and Mohammed Rafi साहब की आवाज़ है. फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल. 1965 में आई थी ये फिल्म. वेल, आप कहेंगे कि सरिता हर गीत के बाद कहती है बहुत ब्यूटीफुल गाना था, क्योंकि अच्छा संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप कहेंगे बुरा संगीत क्या होता है. वेल, वो गाने जो कानों को सुनने को ना अच्छे लगे तो वो मैं प्ले भी नहीं कर सकती हूँ. और कभी कभी इसीलिए मैं चूजी हो जाती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरी पसंद आपकी पसंद बन जाती है. जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं इंजॉय कीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ. एंड मैसेज तो हर गीत के बाद आप बार बार लिख रहे हैं और गानों की भी अप्रिसिएशन हो रही है. थैंक यू. वत्सला लिखती है ब्यूटीफुल सॉन्ग, आज तेरे बिना नींद नहीं आएगी. किसके बिना, आई एम लविंग द सॉन्ग्स यू प्लेड. उर्मिला पटेल जी ने लिखा है, थैंक यू. इरम लिखते हैं, सरिता जी आई एम ऑल्सो लिसनिंग, थैंक यू. वजाहत, जस्ट ट्यून इन. अलेक्सा क्यों पहले, कहाँ अलेक्सा को छोड़कर बाहर गए हुए थे कहाँ. एंड संतोष जी हैरो में आपने भी अभी ज्वाइन किया है. विजय गनोवा जी मॉरिशियस वाले आप भी सुन रहे हैं. नमस्ते सरिता जी, मैं भी मर्द श्रेणी में आता हूँ. दोपहर की राम राम जी. एंड संध्या भावसर जी, थैंक यू अगेन आपका. जहीर खान साहब आपका भी. नाजिया शकील, अरुणा जी एंड फरजाना जी, आप सभी इंजॉय करिए. मनु माधवानी, सुमीला मुंगर, मिसेस शेख, रानी इंसलाव, तोची जी, भारती डी जी उल्लास टोरंटो में, सलमा जी मेडस्टोन में, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, दिव्या हैरो में, दिनेश पोपट जी, फरीदा गुलाम अली जी. एंड अभी तक जगतार जी नहीं आए हैं. हाँ, देखा, मुझे भी अब नाम याद होने लगे हैं. तो आप वैंकूवर में हमारे प्रोग्राम सुनते हैं. जिनका नाम लेना भूल गई है सरिता, तो माफ कर देना, सरिता भुलक्कड़ है.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.75, Pakistani rupees 374.73, Sri Lankan rupees 443.57, Bangladeshi taka 165.24, Afghan Afghani 86.15 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LEICA Gold. LEICA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £108.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड.
3: यू, या यू लिसनिंग टू द रेडियो अप टू व्हाटएवर, वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो देयर इज अ लॉटो ड्रॉ कमिंग अप एंड
4: इट कुड बी यू.
3: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Our line. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
12: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
14: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
13: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
13: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
16: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Laika Radio and Laika Gold.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। दोनों गीतों में आवाज़ें थी एसपी बाला सुब्रमण्यम एंड आशा भोसले की। पहला गीत 100 डेज फिल्म से चुना था, ये फिल्म भी आज ही के दिन इन 1991 में रिलीज़ हुई थी। और दूसरा गीत था फ्रॉम द फिल्म एक ही भूल, 1981 की फिल्म। प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर है 14 minutes after 6 o'clock. Good evening.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 25 paisas. Send money to India via SBI Yono app or branch. कहीं भी जा सकते हैं आप, किसी भी ब्रांच में, बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, आल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Travel in style, offer the best prices in flights and holidays to any destination of your choice. Call now for your early bird discount. 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Travel in style, fully bonded for your peace of mind. Travel in style. Travel in style. Travel in style.
3: Selling your car can be super simple. If you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler. To the right a bit, mate. Yep, back. Back a bit. Bit more. Bit more. Oh, no, too far. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
4: Now, make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Chalo jaiye ek nava safar par.
9: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
11: बोले तू ने क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूं।
11: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
9: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
11: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
15: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
16: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
15: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Love
13: राम कृष्ण हरी
17: यूके तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. तिकीट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
6: Lajit, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
20: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
21: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अनुराधा पौडवाल एंड सुरेश ओबराय की आवाज़ थी। और मेरे कुछ साथियों ने पूछा है कि किसकी आवाज़ है ये, सुरेश ओबराय की आवाज़ थी। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अनुराधा जी का ये गाना मैंने चुना आपके लिए।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और इस गीत के जरिए हम याद कर रहे हैं राज खोसला जी को, हिंदी सिनेमा के महान फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक। उनका जन्म 31 मई 1925 में हुआ था। 9th जून 1991 को उनका निधन हो गया था। 1950 से 80s तक के दशक में उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, उनमें से थी ये फिल्म भी।

0: ये फिल्म भी बनाई थी राज खोसला साहब ने, उनको हमने याद किया इन गीतों के ज़रिए। वैसे तो मैंने सभी लाइनअप किए थे कि इसावर के बाकी के गीत भी उन्हीं की फिल्मों के होंगे, लेकिन अभी अभी हमें खबर मिली है कि सुमन कल्याणपुर जी नहीं रही हैं। सो बाकी जो गीत हैं वो मैं उनकी आवाज़ में गाए हुए आप तक पहुँचाऊँगी। सो राज खोसला जी के बारे में बात कर रहे थे, वैसे शुरुआत के दिनों में वो एक गायक बनना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो में काम भी किया, बाद में वो गुरुदत्त के असिस्टेंट बने जहाँ से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था। CID, काला पानी, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, प्रेम कहानी एंड जिसमें राजेश खन्ना एंड मुमताज थे, एंड नहले पे दहला एंड मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये सभी फिल्में उनकी थी, दोस्ताना भी। पर उसके बाद उनकी फिल्में थोड़ी सी नहीं चल रही थी तो वो काफ़ी निराश हो गए थे। एंड उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी की थी। आफ्टर हिज डेथ द राज खोसला फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश बाई हिज डॉटर सुनीता खोसला भल्ला विद शत्रुघ्न सिन्हा और बाकी भी बहुत से आर्टिस्ट थे। एंड हम हमेशा जब भी उनके गीत प्ले करेंगे तो उन्हें याद करते रहेंगे।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: राइट, साउथ ऑल ट्रैवल वालों का मैसेज भी जल्दी से आप तक पहुंचा दें। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ऑल ट्रैवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स that includes flights, hotels and atoll protection, trusted for over 40 years and winner of the British Travel Award. Visit South All Travel or call on 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है लाइका गोल्ड, travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
5: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
4: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: London, volume vadhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi aavi rahi che London.
11: Ram chahe leela chahe leena chahe.
10: Dhamakedar musical night mate ready thai jao.
11: Udi udi ja.
10: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. टिकट्स बुक करो srevents.com पर। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंदन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
15: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
16: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaymin's Fryams. In different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
15: Jaimin Fryans, available at your nearest ethnic grocery stores.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

ये आवाज है उस कलाकार की, उस गायिका की जो आज अभी हमें छोड़कर चली गई। ये आवाज है सुमन कल्याणपुर जी की।

0: in a convenient bowl. Coca noodles. Quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: 28 जनवरी 1937 में उनका बर्थ हुआ था ढाका बांग्लादेश में और इनका करियर 60s-70s में बहुत लोकप्रिय हुई थी और उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी बंगाली गुजराती कन्नड़ पंजाबी भोजपुरी कई भाषाओं में गीत गाए एंड उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब मुकेश साहब एंड मन्ना डे तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ काफ़ी फेमस बहुत पॉपुलर गाने गीत लाइक आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे दिल ने फिर याद किया ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं जो उनके तुमने पुकारा और हम चले आए पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है अजहुना आए बालम ऐसे बहुत सारे गीत हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.68, Pakistani rupees 374.7, Sri Lankan rupees 443.59, Bangladeshi taka 165.25, Afghanis 86.16.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: It's £108.63 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, Ansuni Bate, Raag Adharit Gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
5: Ye hai
6: Leica Gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: भाई फाइनल चल रहा है इस टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने बना लिए 145 रन्स उनके पांच खिलाड़ी आउट हुए इन 15.5 ओवर्स एंड 25 बॉल्स में दे नीड ओनली 11 रन्स
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly where more of your money makes it home with competitive rates and low fees download the Remitly app today Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: ये है
6: Leica Gold.
1: Another beautiful song sung by Suman Kalyanpur. I always loved this song. नूर महल था फिल्म का नाम मेरे महबूब ना जा आज की रात ना जा एंड फॉर ईयर्स आई हैड बीन थिंकिंग दिस इज लता मंगेशकर सिंगिंग लेकिन ये आवाज़ है सुमन जी की

सुमन जी वॉज 89 ईयर्स ऑफ एज, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्लेबैक सिंगिंग में एक आवाज़ जो हमेशा अमर रहेगी।

0: कि जीवन आना जाना है या हर कोई आता जाता है, अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कब आता है। मेरे भी जाने का वक्त है, मैं जा रही हूँ, फिर लौट के आऊँगी। नेक्स्ट वीकेंड मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। नेक्स्ट वीक वीकेंड वीर विल बी सिटिंग इन फॉर मी, उनका साथ दीजिएगा। मुझे माइक्रोफोन की इस तरफ से अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर। सुप्रतिम इज नेक्स्ट आफ्टर द न्यूज़। बाय फॉर नाउ।
1: Selling your van can be super simple if you choose We Buy Any Van. They're on average 11 minutes away, so you can get it all sorted in under an hour. If only they could make keeping your van clean simpler. And spotless. Oh, for crying out loud. We Buy Any Van. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanyvan.com.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 our line.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
11: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
11: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: Fly more, pay less with Laika Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later, all at all protected. Call 0207-132-0700 or visit laikafly.com. Laika Fly. Fly more, pay less.
13: Eviction? Tenant dispute, property ka masla. Canton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
15: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिकली लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी वेयर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सेकंड्स Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
16: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: A very good evening and welcome to Vintage Gold. मेरा नाम है सुप्रतिम. आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह टुडे. अभी जो आपने दो गाने सुने, लेट मी स्टार्ट विद द सेकेंड वन फर्स्ट बिकॉज इट्स रियली सैड न्यूज़, बट आई नीड टू शेयर दिस विद यू, विच इज़ सुमन कल्याणपुर, हु वॉज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम आर पार 1954 फिल्म, has sadly passed away at the age of 89, and the news has just come out. So this song was in a tribute to Suman Kalyanpur. She in her career spanning a few decades has sung between 700 to 800 songs in various different Indian languages, and they say that she's probably one of the most underrated singers, playback singers that the Hindi film industry has seen, but she was absolutely amazing in all the performance that she did. Suman Kalyanpur was born in Dhaka in the year 1937 and then moved to Mumbai, where she sang for Hindi films as well as Marathi, Uriya, Bengali and various other regional languages. So this song from 1954, like I said, was from the film Aar Paar, where a very young Suman Kalyanpur had sung that song. This film was produced and starred by Gurudat and Shama, and the music was given by the great O.P. Nayyar. उससे पहले जो आपने गाना सुना वो था फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर और मुमताज थे उस फिल्म में, एंड उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. वेल, एज दे से द शो मस्ट गो ऑन एज सो इट विल. मैं हूँ यहाँ आज रात 10 बजे तक आपके साथ, एंड आई एम सिटिंग इन प्लेस ऑफ सैंडी शाह, हु शुड बी बैक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. लेकिन अगले तीन घंटे वी गॉट लोड्स ऑफ म्यूजिक. देर इज़ अ सैड न्यूज़ ऑफ कोर्स ऑफ सुमन कल्याणपुर पासिंग अवे, बट वी विल सेलिब्रेट द ग्रेट सॉन्ग्स दैट शी हैज़ गिवन अस टू लिसन टू एंड टू इन्जॉय. इसी के साथ कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, उसके बाद शमशाद बेगम की खूबसूरत आवाज़ आपके लिए हाजिर है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अ बिग थैंक यू टू सरिता जी, हु हैज़ बीन एंटरटेनिंग यू फ्रॉम 4 to 7, एंड शी विल बी बैक ऑन द हॉट सीट नेक्स्ट वीक, एंड आई विल बी हियर टिल 10 o'clock, लाइक आई सेड फॉर यू गाइस. एंड सिट बैक, रिलैक्स, इन्जॉय द लवली वेदर एंड इन्जॉय द लवली सॉन्ग्स ऑन विंटेज गोल्ड. आई एम सुप्रतिम, सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह.
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-23-23-23. Ye hai Like a Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: If you send money through SBI, you'll get 127 rupees and 30 paise for every pound that you transfer. And if you send the money through the Yono app or the SBI branch before the end of June, you'll be in a draw for winning a 75-pound voucher if you send monies over 1,000 pounds. And this draw is every day that takes place. Also, if you transfer over 2,000 pounds, you'll be in for a draw for 1 gram of gold coin every week. So, there is baat ki hai. Transfer your money through SBI.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Thank you to Derry Valley for that feel-good song. It was definitely feel-good. Perfect song for a Sunday. And the music for this was C. Ramachandran. Chitalkar unka naam hai. Unka jab wo playback singing karte the, to unhone apna naam Chitalkar rakha tha. So he is the singer as well for this particular song. Unke saath the Meena Kapoor in the vocals. Aur P.L. Santoshi iske director the aur lyricist bhi the. कास्ट में नासिर खान, रेहाना, इंदुमती और कुमकुम थे और ये एक बहुत ही पुरानी 1947 की फिल्म शहनाई से था. आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग. देयर आर मेनी मोर ऑन द वे एंड सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. मेरा नाम है सुप्रतिम. आई एम विद यू टिल 10 o'clock.
0: स्प्रिंग इनटू द सनशाइन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क.

कितना बदल गया इंसान, ये गाना किसी भी डेकेड में या कभी भी आप सुने, आई डोंट थिंक द मीनिंग एवर चेंजेस. एवरी टाइम यू हियर इट इन विच एवर एरा, इट रिमेन्स द सेम. 1954 की एक खूबसूरत फिल्म थी ये, जिसका नाम था नास्तिक, और इसमें थे अजीत साहब, जो हमारे अजीत साहब जो बाद में 70s और 80s के फिल्म के विलन बने, ही वॉज द एक्टर दे एज इन द हीरो, एज वेल एज नलिनी जयवंत जी के साथ इन्होंने इसमें बहुत खूबसूरती से अपनी अदाकारी दिखाई थी. इसके डायरेक्टर थे आईएस जौहर. नॉर्मली वी एसोसिएट आईएस जौहर विद फनी थिंग्स एंड फनी स्क्रिप्ट्स एंड फनी एक्टिंग, बट इन्होंने ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही संजीदा फिल्म को डायरेक्ट किया था, एंड इट वाज म्यूजिक गिवन बाय सी रामचंद्र साहब. आई होप यू एंजॉयड दिस सॉन्ग. इट वाज संग बाय कवि प्रदीप एंड रिटन बाय हिम एज वेल. इसी के

0: इतना बदल गया भगवान।
1: काई बोले शैतान,
0: देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान। कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान।
1: ठीक है भगवान,
0: बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। उन्हीं की पूजा प्रभु को प्यारी, जिनके घर लक्ष्मी।

0: सुनकर इस पापी को तानो, सुनकर इस पापी को तानो, बदल न लीजो अपनो ठिकानो। हे भगवान हे भगवान, भारो थारो प्रेम पुराणो, भारो थारो प्रेम पुराणो, हम है थैले तुम हो खजानो। भरते रहियो दाश की झोली, देते रहियो दान, तुम्हारी जय जय हो भगवान, तुम्हारी जय जय हो भगवान।
1: तो कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान।
2: धन वाले हैं बड़े मछंदर, सोने के बनवाए मंदिर, भगवान रहते इनके अंदर, खरी खरी कहता है कलंदर।
0: अबे बंदर,
2: मन बैठा है इस दुनिया में, धर्म से धन।

0: अपने से भरोसा है तो ये दाव लगा ले। गीता दत्त जी की खूबसूरत आवाज़, फिल्म का नाम बाजी, 1951 की एक सुपरहिट फिल्म, डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त, नवकीर्तन के बैनर के अंदर ये फिल्म बनी थी। इसमें थे देवानंद, गीता बाली, कल्पना कार्तिक, एस डी बर्मन साहब का खूबसूरत संगीत। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। दिस गीता दत्त जेम इज ऑलवेज अ सुपर हिट सॉन्ग। यू फील गुड आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। बट देर इज ऑल्सो नॉट सो गुड न्यूज़ टुडे। वी हैव जस्ट गॉट द न्यूज़ दैट वी लॉस्ट सुमन कल्याणपुर। शी सैडली पास्ड अवे टुडे एट द एज ऑफ 89. A wonderful singer in her own right, and a wonderful human being as well, is what reports suggest. So we will be playing some songs for her as a tribute to her. And of course, the last song that we will be playing in this hour, which is coming to an end now, will be from with her and Mohammed Rafi in tow from the film Mamta. लेकिन मैं आपसे फिर मिलूंगा उस तरफ न्यूज़ के उस पार। वी हैव लोड्स ऑफ सॉन्ग्स। टुडे इज़ ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अनिल बिस्वास जी, सो आई हैव सम रियली रेयर जेम्स फ्रॉम हर। बट दिस न्यूज़ फ्रॉम सुमन अबाउट सुमन कल्याणपुर जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू, सो वी आर इंक्लूडिंग सम सॉन्ग्स फॉर हर। ये सुनिए गाना ममता, एंड देन आई विल सी ऑन द अदर साइड।
1: लाइक अ कूल, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: दिल जलता है दिल जलने दे, एक दर्द भरी आवाज़ और किसी की नहीं हो सकती मुकेश जी के अलावा। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। आई रिसीव सम अमेजिंग मैसेजेस, थैंक यू सो मच, एंड पीपल आर रेमिनिसिंग व्हेन दे हैड हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन दे वर सिंगिंग अलॉन्ग विद देयर मदर एंड द फैमिली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, इट रियली ब्रिंग्स एवरीथिंग टू लाइफ दैट वी डू हियर, सो थैंक यू एंड कीप देम कमिंग। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल बिस्वास, जिनकी हम आज पुण्यतिथि या डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। एंड द कास्ट फॉर दिस फिल्म वाज मोतीलाल मुनव्वर सुल्ताना एंड वीना जी। एंड दिस फिल्म वाज पहली नज़र, 1945 क्लासिक। एंड इसके लिरिसिस्ट थे डॉक्टर सफदर सीतापुरी। अनिल बिस्वास का म्यूजिक, लाइक आई सेड, एंड टुडे इज हिज अनिल बिस्वास जीज death anniversary. He passed away on this day in 2003. He was born in Borishal district of Bangladesh in 1914, and he was in the same music company where he was working as a arranger and lyricist, where the greats of K.L. Sehgal and Sachin Dev Varman were also part of the same music company. And then he moved to Mumbai, and the rest, as they say, is history. So 1930s se leke 1960s tak inhone bahut sari filmon mein bahut hi amazing gaane diye. Agle hour mein I'll play one song that he did with Talat Mehmood Sahab, and Talat Mehmood Sahab used to consider him his guru and his mentor. So kuch aur baatein karenge, but that is in the next hour. Abhi ke liye there are few messages on the way, and then some very beautiful songs as well as on the way. Sunte rahiye Vintage Gold, mera naam hai Supratim, I am with you until 10 o'clock.
1: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
2: This summer at Tesco Mobile, get our 100 gig SIM for just £15 a month for 24 months with club card prices, saving you £60. Plus, you'll get £20 worth of club card points worth double with reward partners, or even triple with selected eating out venues. More points, more summer. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card 4G phone and 24-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration. Terms at tescomobile.com/terms.
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं, तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
12: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
13: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
15: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
16: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime Location
1: High Appreciation
2: in Dubai.
3: Every morning a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HartyHanks.com before your competitors do.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
9: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
10: Forgotten memories refreshed. Like a gold.

0: और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुरैया जी की खूबसूरत आवाज़, फिल्म का नाम अफसर, जो कि इतनी खास मतलब वेल नोन फिल्म नहीं है, लेकिन उसके गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। आई होप यू इन्जॉयड दिस सॉन्ग बाय सुरैया जी। इसी के साथ हम आने लगे हैं, इट वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, कैन यू इमेजिन दैट, बट गाने ऐसे ही चलते रहेंगे। देयर विल बी अनदर सॉन्ग एंड दैट इज़ from Suman Kalyanpur, who I mentioned earlier, we've lost today, unfortunately, and this is a tribute to her, and that song will take you to the news, and I will see you on the other side of the news. Ye film ka naam hai Zindagi aur Khwab, 1961 ki film hai, and Suman Kalyanpur ji ki khoobsurat awaaz aapke liye chode ja raha hu. I will see you on the other side. Sunte rahiye Vintage Gold.
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.

0: आज असनम मधुर चांदनी में हम, मुझे लगता नहीं है कि ये गाना कभी पुराना हो सकता है. सच एन एवरग्रीन सॉन्ग, एवरी जनरेशन प्रॉब्ली लव्स इट एंड एंजॉयज इट. फिल्म का नाम चोरी चोरी, 1956 की एक सुपरहिट फिल्म. मन्ना दा और लता मंगेशकर की आवाज़ थी इसमें, एंड इसमें थे राज कपूर एंड नरगिस, एंड दी फिल्म वॉज सॉरी दी म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दिस वॉज शंकर जयकिशन. उससे पहले जो गाना आपने सुना, दैट इज अनदर, वी डोंट प्ले दैट ऑफ्टन, इट्स क्वाइट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, तारारी तारारी बाय मोहम्मद रफ़ी साहब एंड सुरैया जी, दोनों की आवाज़ें थी इसमें. फिल्म का नाम दास्तान, जो एक 1950 की एक मशहूर फिल्म थी. इसमें भी राज कपूर थे अलॉन्ग विद सुरैया एंड नौशाद साहब का फेमस संगीत. आई होप यू एंजॉय दीज टू बैक टू बैक सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस. काफ़ी सारे मैसेजेस आए एंड वी रियली रियली एंजॉय रीडिंग योर मैसेजेस, एंड इट्स सो इनकरेजिंग टू सी दैट एवरीबडी इज ट्यून्ड इन एंड आर एंजॉयिंग द शो. ये हमारा थर्ड आवर है. आई एम सुप्रतिम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह टुडे, हु विल बी बैक नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीकेंड रादर. एंड विंटेज गोल्ड में वी प्ले द चॉइसेस्ट क्लासियस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम द यस्टरडेज. सो पुराने सदाबहार गाने जो आप सुनना चाहते हैं सब यहीं पे मिलते हैं. एंड दिस इज़ द ओनली शो प्रॉब्ली anywhere available that plays these songs. So जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारा गाना, हमारे जो गाने हम प्ले करेंगे. एंड वन बिट ऑफ सैड न्यूज़ दैट आई शेयर अर्लियर इन द अर्लियर आवर, विच इज़ दैट वी हैव लॉस्ट डॉयन ऑफ हिंदी म्यूजिक, सुमन कल्याणपुर, अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे अर्लियर टुडे एट द एज ऑफ 89. सो वी विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट टू हर. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम विथ यू अप अंटिल 10 o'clock.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: If you're planning to send money to India via SBI, you will get 127 rupees and 30 paise for every pound that you transfer. If you make the transfer through the Yono SBI mobile app or through the branch before the end of June, you will be eligible for a draw of £75 voucher every day if you send over £1,000, and a 1 gram gold coin every week if you are sending over £2,000. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: What a wonderful song, Rahi Matwale. तलत महमूद साहब की मखमली आवाज़ और सुरैया जी की बेहतरीन सुर के साथ ये फिल्म वारिस 1954 की एक क्लासिक फिल्म थी. बट इसके पीछे जो कहानी है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सॉन्ग विच इज़. इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास साहब एंड लिरिसिस्ट थे कमार जलालाबादी. अनिल विश्वास साहब वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन तलत महमूद. तलत महमूद एक्चुअली इनएक्टेड इन दिस फिल्म एज वेल एज ही डिड इन अ फ्यू अदर्स एंड ही एब्सोल्युटली डिसलाइक्ड इट. ही डिडंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ही वांटेड टू बी बिहाइंड अ माइक्रोफोन वेयर ही वॉज हैप्पियर सिंगिंग सॉन्ग्स. एंड अनिल विश्वास एक्चुअली सॉ दैट the passion in this man, and he gave him his first break in Hindi movies, which was in a film called Arzu in 1950, and then in 1954 there was Waris, and there are many other songs that they've collaborated together. और तलत साहब कहते थे कि वो उनको अपना गुरु मानते थे अनिल विश्वास को, और कहते थे कि ले दे के मेरा इस दुनिया में अनिल दा के अलावा और कोई नहीं है. एंड दे वर वेरी वेरी क्लोज एज मेंटोर एंड मेंटी. आज अनिल विश्वास साहब की पुण्यतिथि है. इट्स हिज डेथ एनिवर्सरी. ही पास्ड अवे ऑन दिस डे इन द ईयर 2003. आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग. ऐसे ही बहुत सारे और गाने आने वाले हैं. मेरा नाम है सुप्रतिम. आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह एंड यू आर लिसनिंग टू विंटेज गोल्ड.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a beautiful song. फिल्म का नाम अमरदीप रफी साहब एट हिज बेस्ट. सो इसी के साथ मेरे जाने का भी वक्त आ चुका है एंड आई होप यू enjoyed द शो. आई रियली enjoyed प्लेइंग ऑल द songs टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर listening इन एंड फॉर योर messages. लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ लता मंगेशकर और हेमंत कुमार मुखर्जी की खूबसूरत आवाज़ में एक फिल्म टांगा वाली से गाना. मिस्टर सैंडी शाह विल बी बैक ऑन द हॉट सीट नेक्स्ट वीक. एंड याद रखिए गानों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा विथ Gold Nights tonight and tomorrow morning 6 o'clock Kajal will be there. Take care of yourselves and have a very good week ahead.
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: Manchester Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or you.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
12: का गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: bringing to you the best classics all night. Like a Gold on 10:35 AM.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
7: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar. A small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
8: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
9: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
7: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
8: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
10: Feel the fun. Play Ojo.
11: 18 plus, gamble aware.
12: Backed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
15: T's and C's apply.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
17: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203

0: लाइका गोल्ड लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
0: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
0: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
0: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
1: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
0: High appreciation
1: In Dubai
2: The voice that touches every soul Star Express presents Hariharan's Soul India
3: Live in London Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Taza kare apni yaadein. Leica Gold ke saath.